0: मुख्तार जी कहानी अभी खत्म नहीं करते हैं।
1: नहीं
0: करना चाहिए ना,
1: इतना इतना खूबसूरत गाना है। हाँ। तो इतना और इतना जब खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है तो इस गाने का एक बीच का अंतर जो हमने नहीं गाया है वो हम सिर्फ कीबोर्ड का सुर लेकर गाते हैं और जो मुखड़ा है आप सब हमारे साथ मिलकर गाइए, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि इन महान कलाकारों को होगी।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ, आ।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: बिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, टाइडल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, जिस तरह से मैंने आपको खबर किया आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 03265 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

भलो शिव का नाम हरि हरन के आवास में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के और शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हरि हरन और अनुराधा पोटवल जी के आवास में और एल्बम का नाम है 4 धाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए।

इसमें ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड की जरिए, कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं रेडियो SBS का। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में सुंदर भजन पेश किया जा रहा है और अब की बार

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सेन रामबरन की ओर हम आपको ले चलते हैं, सुंदर शिव जी का भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर भजन सेन रामबरन की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में आपकी बार सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे आपकी बार पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में एक सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है।

पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सोमवार का दिन है, भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, वंदन

0: और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश होगा सुरेश वटकर की आवाज में।
1: भगवान का हर भक्त अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भगवान रुद्र को सर्वाधिक प्रिय उनकी कांवर चढ़ाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो आज के दिन नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

सानुआ अलका की आवाज में गाना पेश की गई फिल्म का नाम शरीफ तुम। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अजय और शरिया प्रोग्राम में

गाना जो पेश की गए अजय और श्रेया जी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। बाहर से सुहाना है, अंदर से इंजन पुराना है, गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना सोनू निगम एंड ऋषा शर्मा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। राहत जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

में ये गाना बसपी इसकी गई पुरानी फिल्म खानदान, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब ये बार द मैन विद अ गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है किनारे किनारे।

दमन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम किनारे किनारे। चलिए अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

आसरो बीठे की ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार के बाद महेंद्र कपूर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये खास गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और

0: रेडियो SBS की। सर ये पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दोस्ती का गीत पेश की गई है। चले तलत महमूद और आशा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।
1: जब दिल नादान का प्रीमियर पे मेरी मुलाकात उनसे हुई, मुलाकात वैसे होती रहती थी आगे पीछे, तो हमने ये शायद जरूर कहा हो कि तलत जी आप इतना अच्छा गाते हैं, क्यों नहीं आप अपना पूरा वक्त इसी टैलेंट में शायद लगाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा, कल हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और वही हुआ कि आगे चलकर जब मैंने अपनी पहली पिक्चरें 1952-53 में काम किया तो तलत महमूद साहब ने मेरे प्लेबैक दिया था लैला मजनू में, ठोकर में, और एक समझे के दिल की तमन्ना

रेडियो SBS के जरिए मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी है, पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio SBS.nl

0: पेशकर थी आवास में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए जब याद किसी की आती है फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में किशोर एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम महाचोर।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

और इन लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। लता मंगेशकर एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में, अब की बार हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्म महल की ओर। महल फिल्म का नाम 1949 तक का फिल्म।

महल का गीत पेश की गई लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की ओर। और अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम दो रास्ते, इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030 262 66 11।

उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनवल की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना मेहदी हसन और मेहनास प्रोग्राम में होगा। एक पाकिस्तानी मूवी का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, फिल्म का नाम बहन भाई। फिल्म बहन

इसकी गए तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गए। आशा भोसले एन लता मंगेशकर की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं 1962 का फिल्म का गीत की ओर। फिल्म का नाम प्रोफेसर

गाना जो पेश की गए आशा भोसले और खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम प्रोफेसर, उसी ये फिल्म का गीत भी आपने सुना। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश प्रोग्राम।

द माइटी मुकेश की आवाज में गाना बस पेश की गई फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम। रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। एक नॉन फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में रफी साहब की आवाज में पेश किया जा रहा है।

परमेश्वर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में स्वर्गीय हेमंत कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं।

स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिंदगी और मौत फिल्म का नाम।

महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई जिंदगी और मौत फिल्म का नाम। सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-25-65-65-60। लता मंगेशकर

इसकी गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना पेश होगा, फिल्म का नाम सबसे बड़ा रुपया। किशोर और लता जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है वेबसाइट radio.sbs.nl। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर, जावेद अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

DJ Jamie en Sustin Johan, die avans meer via Abni Sunat, die programma hier goed zodat dan. दबंगियोर सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

En श्रेया जी की आवाज में सोनू निगम एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई दबंग फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म दहे की ओर। उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल।

भी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0322 65 65 60 है। कुमार सानू एंड

रेडियो SBS के जरिए कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना

हिमेश रेशमिया और साथियों की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले अरिजीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में कौर खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

रेडियो SBS की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर सुनते ही रहना।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए फिल्म गुड लक उसी फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है सुखविंदर सिंह और शिल्पा राव की आवाज में।

सुखविंदर सिंह एन सिल्वा राव की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना प्रोग्राम में कमल खान और नीति मोहन के आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। उदित नारायण और श्रेया जी

चलिए गाना बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में ये गाना।

एक और बाबुल सुप्रियो की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सरगम और सुरेश वदकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गए नाम गूंज जाएगा फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

और श्रेया जी की आवाज में, सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है। चलिए फिल्म नकाब की ओर, जावेद अली की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए शरिया जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आज के प्रोग्राम में।

कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया घोषाल की आवाज में नजर फिल्म का नाम रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। वेबसाइट होता है radio.sbs.net। चले प्रोग्राम में सोनू निगम महालक्ष्मी आयर और साथियों की आवाज में द फिल्म नील एन की अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

SBS की जरिए एंड फिल्म गुरु गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2266-1611।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हाजिल फिल्म का नाम उसी फिल्म से ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना अभिजीत की आवाज में। चले प्रोग्राम में अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं।

ये फिल्म का नाम हाँ मैंने भी प्यार किया, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में अलका जी की आवाज में। सुनने वालों चले प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आज उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म का नाम था आखिर क्यों। अमित कुमार और लता जी की आवाज में गाना पेश की गई। अब की बार मोहम्मद रफी और

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए ये प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में बस सुनाई देता है।

गाना जो पेश की गई किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना, आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म हम झोली की ओर, सॉन्ग बाय मोहम्मद रफी एंड लता। आज की प्रोग्राम में खूबसूरत गाने खूबसूरत नखमे आप सभी के लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है हम झोली, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है।

नाम हम जूलिए मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और लता की आवाज में ये गाना जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गए दिल में क्या है। फिल्म जिगरी दोस्त, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। चले किशोर एंड लता की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

रेडियो किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। शहर उत्रेख हॉलैंड का सबसे खूबसूरत शहर से ये आवाज बस निकलते हैं। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम काला पत्थर।

एक गाना जो पेश की गई फिल्म का नाम काला पत्थर, उसी फिल्म से मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

राजू की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे लता की आवाज में ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। तो चलिए एक बार फिर से लता जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में फिल्म तलाश का गीत पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इसके संग तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद। दिस लीजिए क्वाम आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव द फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

लीना ओ लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार न मिला अरे प्यार कर ले इस द फिल्म शुक मंगल सावधान एंड इस गजंग दर बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड अंदर गाँव दर फेदर मैट द फिल्म हम दिल दे चुके सिन हम दिल दे चुके सिन द टाइटल सॉन्ग दिस

0: ben Den Hai, Payal ne Machaya Shor was uit de film Mohabbatein. Het volgende liedje is ook uit de film Mohabbatein en het is Aankhe Khuli Ho Ya Ho Band, Didaar Unka Hota Hai. Kaise Kahun Main O Yaara Ye Pyaar Kaise Hota Hai.
1: Ek ladki thi deewani si, ek ladke pe wo marti thi, nazrein chuka ke, sharma ke, galiyon se guzarti thi, chori chori, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी. कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है. और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu. Jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में गोरी है कलाइयां तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

वो बारिश की बूंदे इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, अ फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर, एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्प गसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर, प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग।

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म 14 फेरे कंठ सहंदो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर द फिल्म लगान एंड अर द फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्ट गेजॉन्ग डोर सोनू निगम एंड अलका याचिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इस सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एंड कवाम आउट द फिल्म सनक आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

ये नयन धीरे धीरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों के लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से। वो शाम कुछ अजीब थी।

आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचिका और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचिनी की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

तुझ में क्या है दीवाने, सॉन्ग और किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर कुम आउट द फिल्म बड़े दिल वाले। हाउ द फेदर मेट आउट द फिल्म मलंग हमरा इस लीचे।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे। बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।